पतत पावन भगत वत्सल जुगो जुगे अटल चबर तख दे मालक हलत पल दे रखियक गुरु गरीबनवाज धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर विराजमान अति सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे वडभागे हो जो हफ्तावारी शामा दे सुंदर दीवाना दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर बैठ के आप जी ने अलाहे बाणी रब्बी बाणी सोध रारा साहब दे पाठ सरवण कीते हन। उपरंत बच्चियां दे रसना तो आप जी ने अलाहे बाणी रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नूं अपने स्वासां नूं सफल बनाया है। सतगुरां ने महान बख्श रहमत कीती है जो गुरद्वारा दे प्रबंध वालों समूह संगतां दे संयोग दे नाल जो अज दा पावन पवित्र हफ्तावारी सुंदर दीवान जो अमृत वेले तों सजे हन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा पावन पवित्र पहले प्रकाश नूं समर्पित अते जो अज दा पावन पवित्र श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित करदिया होया अमृत वेले तों समूह संगतां ने हाजरियां भरियां हुणे भी हाजरी पा रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पहले प्रकाश दियां अते श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी दे गुरता गद्दी दिवस दियां समूह संगतां नूं रोम रोम करके बेअंत बेअंत वधाइयां हन। जिथे सतगुरां दा पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा जो गुरता गद्दी दिवस

हूं मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश कर दियान सर्व रोग का अवखद नाम। आज संसार वाल जाती पाइए, हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियान सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी, ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

विभूतेक जाय बिगिनी में हरियं करियं करीम उदरही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयंग पाव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते जो कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते जो कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपहंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सदान के देख फरे घर योग जती के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धादिक संत समूह अनेक मत्ती के सारे ही देश को देख रहे मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुर।

एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जानेयो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो साब तोहे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार

0: हर आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा, साध संगत जी, आप जी बड़भागे हो जो अमृत वेले सतगुरां जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर के महाराज जी दे अमोघ दर्शन दीदार अमृत रूप गुरबाणी सुन करके महान लाहा प्राप्त कीता है। आओ हुण वाहिगुरु गुरमंत्र सिमरन दे नाल जुड़ के होर लाहे प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी करो जी कृपा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच।

0: ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਬਈ ਲਾਭ ਸੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਸਨ, ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹੁ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਡੁੱਬੇ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਥੀ ਨਹਾਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ? ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਤੈਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਸਨਾਤਨ ਮੱਧ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਅਗਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਣ ਮਣ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਸ਼ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਤੈਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਦਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत वैद डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखते हैं डुबे हुए, महाराज कहते मैं तो देखना डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है, डुबे की पहचान की है? उसके कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होने, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई एकद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नूं असीं कहिंदे निर्लेप है, कमल की तरह पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है, धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं कि कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे, हम दे खांते हैं डुबे। महाराज कहिंदे मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई, धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है, सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा, गुणा तो पता चलदा है, इत्थे जानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत लोगो, मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते, अगर हृदय दे च गुण आ जान, गुण परमात्मा दे ठीक है, गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है, जितने अवगुण होणगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होगा, जितना गुण होणगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा, और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चलदी की है, सुरत चलदी है, तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है, असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है, शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर दे गुरु, गुरु की हाजरी पे भर दे, एक दो बंदे आने जिन्होंने गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो यह बोल निकलिया, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी, हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी, गैर हाजर हाजर, चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोते शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोता है, ये ते सुरत दे च है, सुन रहे हैं, एक सैकंड तीन घटनावां घटदियां ने एक ही समय, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इते स्रोता है, सुरत दे च है, अगर ये सुरत दे च है तो इन सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਧਰ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਉਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰ ਤੇਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਨਿਮਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਤੀ ਜੁਲਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਗੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣਾ, ਪਿਆਸ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਿਟਦੀ? ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਛਕਾਂ, ਹੁਣੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਜਪਾਂ, ਫਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐਕਰ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਤ ਛੇ। ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟੇਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੀ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਨੋ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਗਾ। ਜੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਖ ਨੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਟੇ, ਖੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਤੇ ਬਣੀ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨੇ, ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही आंदा हाथ दे गुटका है चल पे है पर गंदे गीत अला पे है डिग पे है तुसी देख सकते चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी चल पेने डिग पेने कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथों चले हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे किथे पहुंचेगा किधरे पहुंचेगा चल चल के थकेगा चल चल के टूटेगा पहुंचेगा किधरे नहीं दावे नाल मैं कह सकदा चाली चाली साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने चाली साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने चाली साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने चाली साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने और चाली साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने कल ते कुछ भी ना बने मेहनत ते बड़ी की थी थके भी ने टूटे भी ने चाली साल पहले हंकारी सन अज भी हंकारी खेड़ते कुछ भी ना चले ने चल चल के थके ने टूटे ने पहुंचे किधरे भी हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा तू मेर कर तू मेरी बांह पकड़ ता ही खेड़ बने दास गोविंद फतेह सतगुर की बांह दे मोहे निस्तार गुरु गोविंद सिंह जी हे प्रभु अपनी बांह दे अपनी बांह पकड़ा ते डिगण तो बची मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन मनुख कोल जिहड़े कन ने ते पुत्र नूं सुन सकदे ने मित्र नूं सुन सकदे ने पत्नी नूं सुन सकदे ने पति नूं सुन सकदे ने भरा नूं सुन सकदे ने मित्रां नूं सुन सकदे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ते हकीकत है महाराज मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहंदे जो तैनूं सुन सकदा मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं परिवार तक पहुंचते हैं मित्रां तक पहुंच जाते हैं पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा पहुंच दिए गल रब तक दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है जहां का कहा दरगे चले महाराज कहने जेदा बोले होया दरगाह दे चल रहा है परमात्मा सुन रहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना दे कन सुनो अरदास जीओ मैं तेरे कन दे गल करनी है थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल भगत बोलते ने प्रभु सुनदा है क्यों उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने इतनियां पवित्र हो जांदियां ने इतनियां सुंदर हो जांदियां ने ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है ओ नेत्र ते करूप ने मैले ने जिन्हां दे अंदर वासना है जिन्हां दे अंदर अनर्थ है साहब कहने वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन गुरु ग्रंथ साहब दे पहले ठेकाकार भाई गुरदास ने आप दी ग्यात ली अर्ज करा मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप कीते ने जिहड़े जिहड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन लोकी धोखा खा सकते सन भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता इस श्लोक नूं भी खोलदे ने पवन गुरु गुरु शब्द है वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया असी जो बोल रहे हैं पवन करके बोल रहे हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंगी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पे है, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोल नहीं बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टूटते ने। कुछ ऐसा बोले है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुदतों की मित्रता दुश्मनी से बदल जाती है। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड दे सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोल चाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध भी बोल चाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोल चाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोल चाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूड़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोल चाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोल चाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना है वाहेगुरु वाहेगुरु, ता ही रसना जत सदी अंदर स्वास चलन पवन है। भावे पानी पीता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़ता है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं शब्द। तो जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप में मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो उतरा, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस देंदे। हाथों तो कुछ नहीं पता चलता, पैरों तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हों के अर्थ कर लगे हैं, मनुख धोखा खा सकता सी, भुलेखा खा सकता सी, भाई गुरदास खोल रहे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहते हैं अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहने देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। ते जिड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तो दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई, कहबे को न सुरत न सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद गुण सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल कुचा सका जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कुल कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरुदास कहबे को न सुरत न सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरुदास मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं कर रहा, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा गल खत्म, मैं अपना विचारां दे मुताबक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोए मनुख कह भी देंदा इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी, जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी, पर कई दफा जद बिरध हो जांदा है बुढ़ा हो जांदा है उदों कहिंदा ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै तो, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है ते सारी गवा के आ गई, सतना का मत हीण असियां का व्यवहार ना पावे, रही कित्थे। इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा, शेख सादी साहब ने कहा है दर जवानी तौबा करदन सीरत पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। जिड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहिंदे ने उहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है, ते पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा, जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू, इहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है। पर बुढ़ा हो गया तो कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, ये फकीर कहिंदा मैं नहीं मनदा। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज, क्यों नहीं मनदे? दलील दिती है एक बुढ़ा बग्याल अगर ये आखे ऐ भेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया उसको पकड़िया नहीं जांदियां, गलते नहीं। बुढ़ा बंदा कहिंदा है मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, कता ही नहीं गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च रसना दे च कन्नां दे च हत्थां च पैरां, इते सारियां कुर्सियां टुटियां पईयां, बेचारे गुनाह कित्थे बैठा केड़ी थां ते बैठा। कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, कता ही नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज। भाई साहब कहिंदे मन में गुरमत गुरमत में ना मन, जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नू प्रवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरुमत, गुरुमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायिका का आइए। अंग अंग टूटे आया है, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते है मैं अर्ज करदा हूं, मैं सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नु वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पुछा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कि कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही होर की। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवा। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अद मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थल्ले की थी सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नु कहा, सुने तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे, केड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे, चल हुणे ही चल, इशा दी नमाज पढ़दे आ, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नु भी नहीं सी, चल पैण लगे, चल पै। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुराती रही, कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदे, जिन्हें मुहम्मद साहब से सब तो पहले शरदा लें दी, वो खदीजा से उन्होंने पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक से शरदा लें दी, वो बेबे नानकी सी। इतों सिखी चली, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर दें दी, इस्लाम नहीं बदलना सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें कबूल कर लिया, मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं तो खुदा दे लग गए। मोहम्मद साहब भी कहने लगे, खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहते ने, हों आखो बोलना जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जीओ, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोल, पता नहीं परमात्मा की बोलता, जैसे मैं आवे कसम की वाणी कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़। ये शरदा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद विच पहुंच गए, कतार विच खड़े हो गए, इमाम ने रुबात पढ़नी शुरू की, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े खड़े। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद, नवाब कहन लगा, सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है, तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ेगी। महाराज कहने लगे, साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी, साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी, कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे आ अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे आ पाठ करदे आ अपने अपने घोड़े लोकी खरीददे ने, कौन गुरु नाल जुड़दा? सब अपने अपने घोड़े खरीद रहे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां विच फसे पए होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा है, वो हाथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने? गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंडा इहदे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं, परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए ना, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा, घर जुतियां भी नहीं लगदियां। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा है, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता है। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना, भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है, पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा से थोड़ी करते हैं, बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होने वास्ते। कई दफा किसे ते साडा भरोसा ते पक्का है, भाई बंदा काबले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहिंदे ने भावना। कर भाव के, हाथ बना भावना दे, पैर बना पैर दे। परमात्मा दा भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाणगे, परमात्मा दी भावना होवे हाथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोयण सुरत करे, अखां बना ज्ञान दिया, समझ दिया, सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दिया अखां बना, लोयण सुरत करे। नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिलावा। इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बार दा अक्षय ज्ञान, उहदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नु बदल दे। अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। जितने चिर तक समझ दी अखां नहीं ने, गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है, भावना नहीं है ये टुंडा है, पै नहीं है ये लंगड़ा है, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये गूंगा है, ये गूंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होंदा, ये बहरा है, ये कितने सुनता है, ये बहरा है। महाराज कहिंदे ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए, पहला पातशाह बाग सतगुरु नानक देव जी महाराज दा वाक, रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है, इनू परमात्मा कितों नसे, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन नहीं, बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनु भोजन मिल रहा है, दूध मिल रहा है, खुराक मिल रही है, एक दिन इसके हथा च ताकत आउंदी कुछ करन लग पैंदा, एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा, एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा, शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल, विकास सारा भोजन ते खड़ा है, रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देने लग पैंदा, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देने लग पैंदा, एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे, ये सारी तौफीक मिल रही है भजन नाल, जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा, पर भजन रोज रोज ना होवे वो अखां नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नूं वेख सकदे ने, वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकदे ने, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है, यह भी मैं अर्ज कर दिया, भोजन की बुरकी मूंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया रस नहीं आया, क्यों अजे जबान विचो तौफीक नहीं है, वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है, जिन्हों वाहेगुरु आखदा रस आवे साहब कहन परमात्मा की रसना ते वसे है, प्रभ जी बसे साध के रसना नाम एक जन का दासन दसना, वाहेगुरु तो यदि जबान ते क्यों ये वाहेगुरु आखदा रस नाल भर जाता है, ये बाणी जपदा रस नाल भर जाता है, बाणी तो यदि रसना ते वस गई, नाम तो इसकी रसना ते वस गया, जिन्ने चिर तक वाहेगुरु वाहेगुरु आखदा रस ना आवे अजे वाहेगुरु रसना ते नहीं वसया, ते जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखा नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा, पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान दा रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डिया की ताकत बाद विच बनता है, इंद्रिया की शक्ति बाद विच बनता है, रस पहले, भोजन की बुरकी का रस आ गया स्वाद से पहले आ गया, हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी, वाहेगुरु आखदिया जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस गया, अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नू देख सकन, अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा, पर इतनी गलती स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है, बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वस, अजे हनूस दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति, अजे वेखना उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश वो ते लंबी गल है, अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है, प्रभ जी वसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है, ये सब कुछ जपदियां जपदियां हुंदा है, महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे वो कंचन नो हथ लावे खेऊ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए कम नो हथ पांदा डेरी हो जांदा, पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए कम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा है, महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्या, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਲਸ਼ੁਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 1550 AM ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 11 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 18.98 ਦਾ, ਅਤੇ BC ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 51 ਪਾਉਂਡ।
4: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਫ੍ਰੀ ਪਲੇਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
6: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
4: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604-349-1313, 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
7: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
8: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

बरम सुख सागर गरत परत गहल हो अंगुरिया सर्वन सुरते नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत

0: सतगुरु कहने मेरे को हाथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हाथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है। किसी दे हत्थे च मना है, किसी दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे। किसी दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथ च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिस नू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनू वेख सकदे ने। इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां विच धन है, टपक रिहा लोभ। किसी दी अखां विच रूप है, टपक रही है वासना। किसी दी अखां विच उसकी औलाद है, टपक रही है ममता। ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां विच रूप रंग है। क्रोध ही दस रहे है, ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां विच कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितिया। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितिया, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दिता। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां विच परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं हुंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे च प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे च समदृष्टि झलकदी है, जिसदे च दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्टि, अमृत दृष्टि। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी विच जहर भी है, तकनी विच अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लियो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कुल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सकां। सुन सकदे ने कन, परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बहरे ने, हर एक दे कन बह रहे ने। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਪੁਰਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ, ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਛਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੱਥਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਠ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਹਸਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह कुछ भी नहीं सुनाई देंदा प्यास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा चल भी नहीं सकता कुछ पकड़ भी नहीं सकता बोल भी नहीं सकता कोई भी बोध नहीं इसनों इते गोद इच इंज पे है जिमे एक पत्थर लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं की थी जा सकती कि कदी ये चलेगा कदी ये दामन पकड़ेगा कदी लदी बले बोलेगा बच्चे ने विश्वासे गोद इच रखे और ममता नाल रखे है आशा जुड़ी हुई है उम्मीद जुड़ी है आज नहीं ते कल चलेगा चलो आज नहीं ते कल बोलेगा आज नहीं ते कल सुनेगा आज नहीं ते कल इसनों असलियत दिखाई देगी सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है चलो कोई गल नहीं आज चलना नहीं आया कल चल लेंगे आज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे आज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे अवतारी पुरुष इना सत्संगियों नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए हे प्रभु तेनु देख सका मेरे को लखा नहीं ने कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मैं सुन सका मेरे को सर्वन नहीं ने और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं तो संबंध किस तरह जुड़े है रिश्ता किवें जुड़े है एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल दा बुढ़ा सहमत हो गया है इसनों बुढ़ा आखण दी लोड़ नहीं है भी बच्चा है पर एक 4 साल दा बच्चा 81 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है इसनों 4 साल दा बच्चा आखण दी लोड़ नहीं है बुजुर्ग है उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो उच्चा है छोटे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो छोटा है धन गुरु अंगद देव जी ने इसनों बड़ा सोना खोलिया नाल इयाने दोस्ती वड्डा रो सोने पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थो अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे इस मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकदा है दादे पोते दा संबंध हो सकदा है मित्रता नहीं है दोस्ती नहीं है दोस्ती ते समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है विचारां दी सांझ तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा अगर हो गया तो इसनूं बुजुर्ग कहण दी लोड़ भी नहीं ये बच्चा है क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल सोचणी नाल तरजे जिंदगी नाल सहमत होवेगा कथा ही नहीं अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं ये बुजुर्ग है दोस्ती समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया स्याणा सहमत हो गया तो इसनूं स्याणा आखण दी लोड़ की मूड है और एक महान स्याणे नाल दार्शनिक नाल ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनूं मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं स्याणा हो गया सूझवान हो गया तल सम हो गया बराबर हो गया भाई साहब कहंदे ने मन में गुरमत गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन ले उलाई है जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने। तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है। तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है, मैं नेड़े किस तरह आवा। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई सब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना आया, जिसने आज ही चलना सीखा तो कितना के चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गहे लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा, बां पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, स्याणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नु कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नु ओमंदा। आज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नु किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पैंदी है, जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उनु प्रभु दी शक्ति कित्थे। जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनु परमात्मा दा पुन्न प्रताप कित्थे। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਚਾਕਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਤਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬਗਲਗੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੰਮੀ ਝਲਕਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਝਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾ ਸਕਣ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 11 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 18.98 ਦਾ, ਅਤੇ BC ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 49 ਪਾਉਂਡ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरभो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा जै नरको कीने तें ए जुगत पछाने नानक लेन भयो गोविंद सिंह ज्यो पाने संग पाने। गोविंद विच लीन हो जाना मनुख दे जीवन दा लक्ष्य है भविष्य है और कोई भविष्य नहीं। परिवार मिल गया है, चंगा रोजगार मिल गया है, धन संपदा मिल गई है, तिया पुत्र मिल गए ने, सब रस्ते दा पड़ाव है। यात्रा दे च की आउंदा एक पड़ाव आया गया, एक पड़ाव आया गया।

यात्री उतने चिर तक यात्रा विच रहिंदा है जितने चिर तक घर नहीं पहुंचदा। जिसनूं असीं घर कहिंदे आं घर नहीं है। ये तन दा थोड़ा जिहा विश्राम पड़ाव है, ये मन दा घर नहीं है। थोड़ा जिहा इसका मैं निखेड़ा करां। प्रथम लईए तन है कि गुरबाणी नूं विचार नाल पढ़िए ते गुरबाणी ऐसा कहिंदी है तन भोजन तो बिना होर कुछ भी नहीं है, तन रोटी तो बिना होर कुछ भी नहीं है। भाव तन की है रोटी। तुसी आखोगे मैं की आख रहे हैं। पहले देखना पड़ेगा रोटी दी अहमियत खासियत। तन रोटी तो बनया, तुसी आखोगे ऐसा पढ़िया नहीं, ऐसा किधरे सुनिया नहीं। गुरबाणी कहिंदी है रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा। तन बनया लहू तो बिंद तो। फिर गुरबाणी खुलासा कर दी है मां की रखत पिता बिंदारा। मां दा लहू है पिता दा बिंद है। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। बहुत सारियां पंक्तियां। प्रश्न पैदा होंदा है खून किवें बनदा है रोटी तो, बिंद किवें बनदा है रोटी तो, और किस तो बनदा है। खून की है रोटी, बिंद की है रोटी। रखत बिंद कर निमया, ये तन निमया है बने है लहू तो बिंद तो। रखत बिंद कर निमया अगन उदर मडा। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। दस मास माता उदर रखया बाहर लागी माया। ये खून तो बने है बिंद तो बने है। खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है। तन बने भोजन तो, तन बने रोटी तो। अगर ये बनया रोटी तो है तो जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते, बिना रोटी तो जीव ही नहीं सकता। तन नूं जन्म दिता है भोजन ने, ते तन जीवदा भी भोजन दे आसरे ते। ये भी मैं अर्ज करा। गुरबाणी ने चार हस्तियां नूं महान पूजनीक आख्या। केड़ियां चार? भगत कबीर जी का बोल है धन गोपाल धन गुरुदेव। हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके। हे अन्न हे रोटी तू भी पूजन योग है, धनता दे योग है। पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगदा, रब भी चंगा लगदा, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगदे। कबीर खुद कहिंदे ने भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे। एले अपनी माला, भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने तिनको मिलबो सारंग पाने।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.
5: Oh!

फटो पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने, जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु सत्संग जीओ, फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथां नूं वाचिए पढ़िए, इतिहास दे दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमती रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां का ही इतिहास है। केड़े? प्रथम ओ जिन्होंने जगत की झोली दे कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली दे पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास दे उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखों का इतिहास है। दिते होवे उसने कुछ, अपनी जान दिती होवे, अपनी सुख संपदा दे दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, विज्ञान दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, या ते देण वाले इतिहास दे छाए हुए ने या खोण वाले। मनुख दे मन दे ते शक्ति दा प्रभाव है। ते मैं अर्ज करा कि दोवें शक्तिशाली आउंदे ने, देण वाले खोण वाले। हाथ ही कमजोर ने, दिमाग ही कमजोर है, कोल कुछ भी नहीं, जगत नूं की देगा। पर कमजोर बंदा खो भी नहीं सकदा, ताकत नहीं, समर्था नहीं, किस तरह खोवेगा? खोण वास्ते भी ताकत चाहिए है।